सुब मानधरम रात्रि अक्तरंगा का अदौ यहाँ न प्रश्न हर लसनाई स्वर्गीय तिबने कागे ही थे इधर मत नंग इतने अपे जीवते तब के ने कोने केला दानु नामा होदाई केला हितने के ना लाबु नामा अपे हितने इत्तकोटाई अपे हित तोले तो स्वर्गीय उदावे ने केला ऐ में क्यों है पाबो आदरणीय थरंगा हम दाम मांगे बैलो आया कि बात सब नाम बैग ऐ ना का अनेक का दल है बना मम्मा तो उनके बहुत रासी के को आया कि गुड़ाक सूदी जे आदरे दरुनात आदरे मांग हांगे के नहीं टिए ये इधर ना आदा ये मोने बलागे नहीं नहीं ते ना हित अन्ना मटे आदरे हांगे का नो ना ये थरम ये असलंग मांग असर नहीं ये इतन ओबेदेसग मम्मे वे मगे स्वर्गे तामत मरे हिमुन उनत दुरी नहीं दो मगे आदरे मांग मी दिना एन बवेन वेन क्या गाली चे ओबे की ऐला देना वा फिर मी एंगे हिता कोई तरंग वेदना हिलुं कदमा दिखेला मांग याना वा यानुला लगता उम्बे हिनावे रंदन उनसुम मत स्वर्गें दोर आरिनवा वाचन नतुव तेरे नादरे लोके मनी हांद करनवा यानुला उम्बे हिनावे रंदन उनहुम मत स्वर्गे दोर आरिनवा

चित्तवती मकर पेटिया लसन ये नाम आदरणीय थरांगा मत स्वर्गे कियान निम समिया हम विच फलविनी दावस भागेम ताव मत आदरे मत ये परिसं करन विदे हिता गन बै ताव मत पार पनिद्युनात अतिंगा लगे न थमायान ने अपे पुंची पुताट हुद थात्तेक वागे मादरणीय समियेक मम गुडा कादरे करनो मागी संजुट मामा मेगा मुएं दिलोशा

0: कावियक आय सन सिल दुन्ना
1: किसी शायर की
0: है बेबे ने कहने के कावियक
1: जो देरू को
0: हट पुट्टा कताई दिने